आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना, फिल्म का नाम पगला कहीं का, जो रिलीज हुई थी 1970 में। साथियों, जीवन की एक नव भोर का आगमन तब भी होता है जब किसी भी परिवार में नव शिशु का आगमन होने वाला होता है। उसके आने की दस्तक से सारा घर, सब रिश्ते खुशी के माहौल से सज जाते हैं। ऐसे ही सुंदर खुशी को दर्शाता ये गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत जिंदगी फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 रिलीज ये फिल्म थी। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजडस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
4: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
5: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।

0: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है. मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ. मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ.
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है. परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है. इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है. रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है. वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है. लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है.
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं. टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं. ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले.
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है. सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
3: और अब बात खेलों की. बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है. भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए. पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई. दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया. कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है. वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा. ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है. अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज.
4: धन्यवाद विशाल. फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है. भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है. इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है. भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है. प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस. पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल. अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है. जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस. राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता. ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक. निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार. दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला. जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच. हिंदुस्तान लिखता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने. संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है. केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें.
3: धन्यवाद मनोज. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से

0: tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की रवि भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी

0: युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 153,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 253,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग

भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है, भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।

0: अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा।

0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
6: अप्पू?
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
6: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
6: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
6: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
6: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
6: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
6: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
6: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
6: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
6: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
6: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
6: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
6: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
6: क्या, कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
6: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
6: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
6: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
2: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
6: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
6: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
6: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
6: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
1: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
2: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
6: क्या सब फीस जमा कर चुके?
2: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर

0: लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
4: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: हस्ताक्षरित।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य संविधानार्थ व्यवस्थां प्रौद्योगिक विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें स्लोवाकिया देशस्य स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिक संकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः, स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने वित्तमंत्री अवोचत् यत् खरीफ इति ग्रीष्मर्तौ धान्येभ्यः पर्याप्त मात्रायां उर्वरकोपलब्धता वर्तते। तयोक्तं यत् ऐषमः प्राविट् नैयून्यं स्यादिति संभाव्यते, तथापि अस्माकं पार्श्वे पर्याप्त भण्डारः विद्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आयुष मन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां द्वादशः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य भव्यायोजनाय औपचारिक कार्यक्रमाणां शुभारम्भो विहितः। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव राजधान्यां नवदिल्ल्यां अवोचत् यत् मुख्य कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे कोलकातायां भविष्यति। अमुना उक्तं यत् अत्रावसरे 45 निमेषात्मकं योगसत्रम् आयोजयिष्यते। मुख्य कार्यक्रमेण सह हुगली नद्यां 500 नौकासु योगसत्रस्य आयोजनस्य योजना वर्तते।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: आयुष मंत्री अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य समारोहात् पूर्वं गतदिने विशेष योग कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणे योगसत्रे 4,00,000 जनैः प्रतिभागं विधाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्वकीर्तिमानं संरचितम्। अवधेयं यत् अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः वर्तते।

0: प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक

0: आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन ने भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: वकीलों, न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से

0: अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होरमुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होरमुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership ink 11 packs to

0: ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರೆ, ಇದೀಗ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರೈಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಸರಣಿ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ವಿದೇಶ ನೀತಿ.
1: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद।
2: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
3: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
2: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकता है, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
3: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो JJ कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मूड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
2: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
3: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब मुहैया कराने बनाने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं पानी के कनेक्शन दिए हैं। तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं। और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
2: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
3: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है। और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTS बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम है, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम वर्ग।
2: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
3: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग

0: जो प्लानिंग बनाई जाती है,
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गाँव था, थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहाँ की दो भी नहीं होगी, 1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुरुग्राम न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता है तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता है तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपने अपने स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1.5 करोड़ लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1.5 करोड़ लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के।

0: उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको एक घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज लेने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे, कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट्स का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है, कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री, तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए तो ऊर्जा दाता बन सकता वो, तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे। ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूँ, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए,
1: इनकम होने लगे।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को। उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप है वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया। मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
3: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens.
4: Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
5: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit, the private sector has a trust deficit, non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society, but more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, you know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents the next wave or the next building on what has happened in the last 10 years, the next 10 years or 12 years, is about recognizing that if you write the laws for the chore, drunk driving is not an argument against cars. If you have a drunk driver, you don't ban cars. You issue licenses, you put the drunk driver in jail. But in India, we always write the law for the chore. So I think that mentality of has in the regulatory system of the license Raj, which by definition believed the world was shortage rather than abundance. Ambassador didn't have clients, it had hostages. But after that, we have released and we didn't get wiped out by foreigners. The fastest growing car companies are Tata's and Mahindra today. They are Indian companies. They are doing very well. So I think the notion that we should be scared of foreigners informed that debate, which is just a lack of low self-esteem. We don't have to be Western to be modern. We do have to be modern. So we have to create a high trust society. And that's why I think this agenda of formalization and moving to Jan Vishwas has been a very important shift in thinking about reforms rather than copying the West. I think China, Deng Xiaoping used to call Gorbachev stupid because he took all the Western reforms and blindly did them. And then he lost his job and Russia has never recovered. While China said, yes, we need to modernize, but we will modernize at our own pace. We will modernize at our own recipe and we won't blindly copy the West. So I think that it is important to recognize that 1991 was important, but it was incomplete. We left out education. We left out formalization. We left out corruption. We left out bank reform. We left out labor reform. We left out primary education reform. So I think obviously every country is a river rather than a pond, and you can never step in the same river twice because the river has changed and you have changed, as Heraclitus used to say. But my sense is that building on the last 12 years of formalization, moving to rules, lays a strong foundation or a neve for Jan Vishwas and Jan Vishwas Siddhant to become the basis of policy in the next 10 years.
4: So what you're saying is that we are now launching a new philosophy of governance, which will be heavily leaning towards rules-based rather than the exceptions-based that existed earlier.
5: This is not more cooks in the kitchen. It is a different recipe. See, there is a certain thought world that prior philosophy had of distrust. There is a certain thought world that it had of control. There is a certain lack of intellectual humility in Mahalanobis's spreadsheet model. An economy is not a spreadsheet. Biology is more important to understand than physics. You know, Mahalanobis was a mathematician, which is even more assumes a level of understanding. So I think the level of the license Raj created an administrative state, which was built on distrust, which was built on control, and which was built on certainty. I think the last 10 years, 12 years are more intellectually humble. We recognize that the world is a difficult place and we have to make it is trying to release some of the controls, whether it is removing the criminal provisions, whether it is removing other things. And it is not built on certainty that old system had.
4: In other words, once business is free from seeking permission, seeking clearances, their entrepreneurial spirits will be unleashed. So economic dynamism in the Indian economy should accelerate.
5: Well, it's not God's will that India should be fourth in total GDP, but 128th in per capita GDP. I mean, it is our choices. You know, Dumbledore tells Harry Potter in Chamber of Secrets, it is our choices more than our abilities that reveal what we really are. And I think we made some really bad economic choices after independence. And I know people will say that we needed to do that. I don't believe that is true. India and China had the same per capita GDP in 90. India and Korea had the same per capita GDP in 1960. I think the new system of thinking about, we don't live in an economy, we live in a society. But we do have to recognize that part of China China's strength and part of America's strength in today's new world geopolitical order comes from their military strength, which really depends on their technology and economic strength. Now, where does economic strength come from? It is not about setting things on fire. It is creating the conditions for spontaneous combustion. I think Indians are very entrepreneurial. I find cultural explanations for economic growth very insulting. The Hindu rate of growth, which was this idiot economist that between 1820 and 1950, India grew at 0.1%. From 1950 to 1991, we grew at 2%, and he called it the Hindu rate of growth. Since then, we've grown at 7%, and we didn't shoot all the Hindus. So clearly, that was an incomplete explanation. I think we used Confucianism to explain why China was poor for 30 years. Now we use it to explain why China is rich. So I think there is no reason for mass prosperity to not be added to mass democracy. If we have a nay soch or rethinking about our economic system, which is built on trust, which is built on governance rather than ruling.
4: In fact, I believe that NDA should be given credit for acknowledging business as a legitimate stakeholder. Now, if you look back at pop culture, particularly Bollywood, the bad person was inevitably the businessman. Today, largely because the state cast them, the support was covert, never overt. Yes. Today, they are legitimate stakeholder in the Indian economy. They are as much a factor of production. That should definitely provide a perfect foundation to launch this next phase, right?
5: There is no other way for India to create mass prosperity other than mass entrepreneurship. I know people think China's success is because of communism. It is because of how they have treated their entrepreneurs. I mean, we have had this innovation in China, whether it's EVs, whether it is this, not coming from government. It's coming from government support, but it is done by entrepreneurs. And we have classic examples of where good policy can create good industries in software and pharma. India exported more software than Saudi Arabia did oil because of the STPI policy in India and the H-1B policy in America. India made 60% of the world's medicines because of the 1970 Patents Act and the 1984 Hatch-Waxman Act. So I think policy can be a very powerful force for good. But finally, policy has to collide with ambitious, enchanting, and smart entrepreneurs. Fiscal and monetary policy may be overrated as a way to transform India. Government spending in India has gone up 108 times since 1990. Per capita GDP has gone up 8 times. The government used to spend about 82,000 crores in 1990. Today it spends 1,20,000 crores. So I think government spending is very important because a modern state is a welfare state. But that's not what it reduces extreme poverty. It doesn't create prosperity. And monetary policy, after a few years on the RBI board, I haven't decided whether it's a placebo or a painkiller or a steroid. It's definitely not a medicine. So what if it's not monetary policy and fiscal? It is the trust of entrepreneurs. It is giving the space to entrepreneurs to grow and putting the bad entrepreneurs in jail.
4: As always, enlightening to speak to you, Manish. Thank you so much for speaking to us.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lee Services. Interviewer was Anil Padmanabhan, senior journalist. This program will also be available on our YouTube channel, News on EIR Official.
6: ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸಿದ್ರಿ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ವಿದೇಶ ನೀತಿಯಾಗಿತ್ತು.
7: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಹಾಡಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಡ್ ಕೇಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ?
8: ಅಮೃತ ಧಾರೆ ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಜತೆ ಗಾತೀನಿ.
9: ಅಬ್ಬಾ, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಹಾಡ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಡ್ ಕೇಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ?
8: ಹಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳು.
10: ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಾಡ್ ಕೇಳೋಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ?
7: ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ?
9: ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ?
10: ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ?
7: ಎಫ್ ಎಂ ರೈನ್ಬೋಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ.
9: ಕೇಳಿ ಭಾವನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳ ರಿಂಗು ಸಖತ್ ಸಾಂಗು
7: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಮನಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ.
8: ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಹೇಗಿರಲಿ ಕನ್ನಡ ನಿನಗಿರಲಿ.
11: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 MHz, musically yours.
6: ಕೇಳುಗರೆ, ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು.
12: ಆಕಾಶವಾಣಿ ದ ನ್ಯೂಸ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಕಿರಣ್ ಝಾ. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two

0: ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ FM ಗೋಲ್ಡ್ನ ಕಾರ್ಯಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾಳಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:53 ನೀವು ಆಲಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಿಲಯದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:55 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ.
1: सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं निखिल सिंह. 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है. एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है. पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं. और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण

0: तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
1: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
0: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं है, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
1: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1.13 करोड़ हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मूड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे MoHUA डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
0: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
1: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में, राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की।

0: ये लखपति दीदी हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई, कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कहें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी, स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टीयर टू टीयर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2,00,000 रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं। प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले उसी तरीके से वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000, तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक, कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं
1: जी। बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ

0: सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
1: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे पांच देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन बार हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन पांच देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, दो दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये दो दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है। और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
0: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्यघर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
1: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
0: जी,
1: और जो बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
0: जी,
1: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है, टॉपअप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्यघर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए,
0: इनकम होने लगे।

मेरे मनमीत में एक बार फिर से मैं आप सभी का रितिका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1971 में आई फिल्म दुश्मन का आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, और मंजू स्टूडियो में आ चुकी है कार्यक्रम निशिगंधा लेकर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी कल सम्मेलन में एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता

0: के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए। श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस में मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने पर सार्थक बातचीत भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। और क्रिकेट में दांबुला में खेली जा रही 50 ओवरों की त्रिकोणीय श्रृंखला के एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया है। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान को हराना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Kiran Jha. India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future."
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को

जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी उपस्थित हो तुम, जो जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी उपस्थित हो तुम, और अदृश्य की तरह मौजूद हो हर तरफ, दूरी में बहुत दूर, जैसे जिंदगी में ना की बिंदी, इश्क का आधाशा और इंतजार में आँख की मात्रा की तरह। सादिश प्लविक मेगाहर्ट्ज़ पर।

जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 7 सेकंड। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम निशिगंधा में और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

प्यार की गलियों में जाने का मन हम सबका करता है, पर आजकल प्यार की गलियां जो हैं वो बहुत बदल गई हैं। पहले लोग प्यार में खत लिखते थे, दूर दूर से मिलने आते थे, मिलने जाते थे। अब तो सोशल मीडिया पर डीएम करने से प्यार का इजहार हो जाता है। खैर, जमाना चाहे जो भी हो, पर प्यार का एहसास हमेशा ही खास होता है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप ही के लिए।

मुझे लगता है किस्मत की लकीरें भी मिट जाती हैं अगर दिल में चाहत सच्ची हो। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। प्यार में नसीब का होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किसी को शिद्दत से चाहना, उसकी परवाह करना, उसकी यादों को अपने दिल में महफूज रखना, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अगर आज की रात आपको कोई कश्मकश बन चुका है, आपकी यादों में कोई छा चुका है, तो उसे अपनी दुआओं में शामिल करिए, नसीब अपने आप बदल जाएगा। अगला गीत तताजी की आवाज़ में।

वैसे ये बात तो सच है कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सादगी से, उसकी सीरत से प्यार होता है। और जब कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है तो वह अकेला इंसान अनमोल मोती से कम नहीं होता हमारे लिए। फिर ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और वो इंसान एक तरफ।

मैं हासिल की हुई चीजों को भूल जाता हूँ, मैं हासिल की हुई चीजों को भूल जाता हूँ। मुझे याद रहते हैं खोए हुए लोग। याद रखो कि इस पृथ्वी पर तुम एक गुम हो चुकी लड़की हो। मैं एक याद में जीने वाला लड़का हूँ, तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोकर याद रखूँगा। इसके पहले कि प्यार हो जाए तुमसे, तुम अभी इसी वक्त गुम हो जाओ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त से ढूंढना शुरू करता हूँ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:39:30। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप।

कभी कभी ना हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड आता है जब इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, और सच कहूँ तो किसी जवाब की हमें ज़रूरत भी नहीं होती। पता है आपको, दिन भर हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी होते हैं, खुद के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन जब रात को हम रुकते हैं, ठहरते हैं, तो सिर्फ हम वही महसूस करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं वही सच है। इस गाने को सुनने के बाद अगर आपके चेहरे पे स्माइल आई है और आपके जहन में कोई चेहरा आया है, तो यकीनन आपकी रात सदाबहार है। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, आप ही के लिए, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला गीत।

रफी साहब के आवाज़ में सुना आपने अभी ये गीत, और ये गाना सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्टूडियो का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो हम हुए जज्बाती। वैसे हम सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स, ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो जब भी हमारी लाइफ में आता है तो हमारी ज़िंदगी महक उठती है। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

आपसे फिर मिलने का वादा रहा 1:10 पर। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। आपसे थोड़ी देर में यानी कि 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियों पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज एवियों पहुंचेंगे। वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में G7 देशों, साझेदार देशों, विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बाद में वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." He said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility.
1: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
2: President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honour, the Order of the White Double Cross, First Class, upon Prime Minister Modi. Mr. Modi expressed gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour. He said the award is a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring friendship between India and Slovakia. Prime Minister Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. He will be formally welcomed by the French President Emmanuel Macron upon arrival. Meanwhile, the 52nd G7 summit

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 10 सेकेंड। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने और कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे अब ये गीत। फिल्म का नाम था तीन देवियां, संगीत था एसजी बर्मन साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। समय बदला, जमाना बदला, लेकिन इस गाने का जो चुलबुलापन था वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब ये बना था गीत तब था। अगर इस गाने ने आपके मूड को थोड़ा सा भी फ्रेश किया है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे आने वाले गाने और भी एवरग्रीन हैं। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में,

फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज़ थी लता मंगेशकर की और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। अब हम सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, फिल्म दुनिया ना माने।

एस टी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज़्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फ़ोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:35 और 27 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। एक अभी मैंने बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ा, मुझे लगता है कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की ज़मीन, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की ज़मीन, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। अब ऐसी ही एक बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से और एकदम अलग अंदाज में साहिर साहब ने भी लिखा है। आइए सुनते हैं साहिर साहब की कलम से महेंद्र कपूर की आवाज़ में अगला गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म गुमराह से, और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1963 में। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था B.R. चोपड़ा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुनील दत्त, अशोक कुमार, माला सिन्हा, निरूपा रॉय, देवेंद्र वर्मा और शशिकला ने। संगीत था रवि का और गीत लिखे थे साहिर साहब ने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस फिल्म में शशिकला को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला था। और अब अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में, फिल्म कोहिनूर से।

अभी आप सुन रहे थे साल 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का ये सदाबहार गीत। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। संगीत की इस महफिल ने अगर आपके दिल को छुआ है तो रेडियो से हटने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आगे आने वाला गीत आपको फिर से ज़रूर पसंद आएगा। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: ಜಯ ಭಾರತಿ. फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है. फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं. सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना. प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया. सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है. इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की. ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई. अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है. इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है. SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें BML मुंजल पुरस्कार समारोह में कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्राचीन और जीवंत सभ्यता है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति का लाभ केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा. संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं. डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है. इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है. कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा विसाल भी इतना हसीन नहीं होता। मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। वक्त हुआ है 2:12:15। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, एहसास को गीतों से, अपनी बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम आशा जी और दिलराज कौर की आवाज़ के साथ।

भाई मौसम मस्ताना तो है लेकिन रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं अपनी रात की हम सफर मंजू के साथ और हम जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

अच्छा एक बात बताइए, कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर आपने ये लाइन किसी ना किसी के लिए जरूर गुनगुनाई होगी। गुनगुनाई है ना? मैंने भी गुनगुनाई है। भले ही वो प्यार झूठा रहा हो, पर दिल को जो सुकून मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। चाहे कोई इंसान, सामने वाला इंसान अपनी दिल की खिड़की को बंद कर ले, लेकिन हमारी कोशिश कभी भी कम नहीं होती। और यही प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कभी कभी मीठी मीठी बातें और सदाबहार गाने मिलकर एक ऐसा समा बांध देते हैं कि दिल अपने आप किसी के इंतजार में धड़कने लगता है।

एक दिन आएगा वो अपनी फुर्सतें समेट कर, और मैं बादलों के छोर से बरस कर उसकी आंखों से बह जाऊंगी। वो सहेजना चाहेगा मुझे अपनी हथेलियों में, मैं परछाई सी उसके सांचे में ढल जाऊंगी। वो पुकारेगा मुझे मौन के उस पार से, गूंजती रह गुजर पर मैं शब्द के अंतराल सी उसके होठों को छुआऊंगी। वो आएगा एक दिन और ठहरेगा मेरी छाँव में, उसको आंखों में समेट कर मैं प्रेम की पृष्ठभूमि में चली जाऊंगी।

0: वक्त हुआ है 2:39 और 22 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के एहसास को, रात के दर्द को बातों से, गीतों से और शायद कुछ गजल से समझने की कोशिश करते हैं। अगला गीत लता जी की आवाज में।
1: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या खत्म होती जाती हैं, और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती,

वैसे सच कहूँ, रात का ये जो वक्त होता है, ये जो पहर है, वो बना ही मोहब्बत के लिए होता है, मोहब्बत को महसूस करने के लिए, उसके दर्द को महसूस करने के लिए। एक ऐसा वक्त है ये जब चारों तरफ खामोशी है, लेकिन किसी ख़ास की याद ऐसे वक्त पर और ज़्यादा शिद्दत से आने लगती है। अगला गीत मुकेश की आवाज़ में।

ये बिल्कुल सच बात है, पुरानी राहें होती ही ऐसी हैं, खूबसूरत भी और थोड़ी दर्द भरी भी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए उन राहों को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। मुड़कर देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं रुक जाना जिंदगी नहीं होता। कभी कभार पीछे मुड़ना, बहुत पीछे रह जाना भी होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूँ आपके साथ मंजू। तो यादों के इस सफ़र से थोड़ा बाहर हम आने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी की नए राहों की तलाश करते हैं, नए सफ़र का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी पीछे मुड़ना नहीं होता, ज़िंदगी आगे बढ़ना होता है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी सुरभि। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीस्तो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: इस बीच स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। केप वर्डे करीब 5,00,000 आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस नतीजे को अब तक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future." In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said, "Both the countries have signed a letter of intent in the field of defence sector."
2: AI का भविष्य केवल innovation से नहीं, बल्कि trust, responsibility और human dignity पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और strategic convergence का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: President of Slovakia Peter Pellegrini has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Modi. Mr. Modi expressed gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor. He said the award is a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring friendship between India and Slovakia. Prime Minister Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit, the third leg of his two-nation visit. He will be formally welcomed by French President Emmanuel Macron upon arrival. Meanwhile, the 52nd G7 summit is underway in Evian, where leaders of the world's leading economies are discussing major global challenges. President Macron has hosted a working dinner on the theme, "Working Together to Address Major International Challenges." Earlier, he formally welcomed the leaders of the G7 countries, including US President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer. European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa are also attending the summit. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Monaco's Minister of State, Christopher Mermland, Minister of Foreign Affairs and Cooperation Isabella Barro-Amadi, and Minister of Finance and Economy Frederic Cotolarata in France yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said the discussions focused on strengthening bilateral trade, exploring new investment opportunities, and deepening economic cooperation between India and Monaco. Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defense Ministry said the missile achieved all mission objectives.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं सुरभि आपके साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, मगर जो दांव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। कहानी का अहम किरदार क्यों खामोश है दानिश, कहानी का सफर आगे बहुत वीरान होगा क्या, मगर ये बात दुनिया की समझ में क्यों नहीं आती। अगर गुल ही नहीं होंगे तो फिर गुलदान होगा क्या, अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या। भाई जिंदगी में दांव पेच लगे रहते हैं और दांव पेच से निकल कर ही हम असल जिंदगी को पा सकते हैं, और जब प्रेम इश्क मोहब्बत हो जाता है तब ये दांव पेच और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए हमराही प्रोग्राम हम और आप सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रही हूँ, तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस बेहद खूबसूरत पहले गीत के साथ। रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़, फिल्म है फिर वही दिल लाया हूँ।

हमरा ही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खुशबुओं की तरह महकते गए, खुशबुओं की तरह महकते गए, तेरी जुल्फों के साए डसते गए, मेरे सपने अजीब सपने थे, मौसमों की तरह बदल गए। न तू मिला न तेरे घर का पता, हम तेरी दीद को तरस गए। कई बार इश्क मोहब्बत में ये लम्हे भी आ जाते हैं जब एक दूसरे को देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, और कई दफ़ा ज़िंदगी इतनी खूबसूरत मुलाकात करवा देती है कि भाई ये ज़िंदगी और ये पूरा दिन, ये पूरा जीवन बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है दो दिल।

वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, उसी के साए की हलचल मेरे मकान में है। मैं जिसकी याद में खोया हुआ सा रहता हूँ, वो मेरी रूह में है और मेरी जान में है। वो जिसकी रोशनी से कायनात है जगमग, उसी के नूर का चर्चा तो कुल जहान में है। वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, उसी के साए की हलचल मेरे मकान में है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं जितनी देर तेरी याद में उदास रहा, मैं जितनी देर तेरी याद में उदास रहा, बस उतनी ही देर मेरा दिल भी मेरे पास रहा। अजब थी आग थी जलता रहा बदन सारा, अजब थी आग थी जलता रहा बदन सारा, तमाम उम्र वो होठों पे बन के प्यास रहा। मैं जितनी देर तेरी याद में उदास रहा, बस उतनी ही देर मेरा दिल भी मेरे पास रहा।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के अंतर्गत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की आशा है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। काबो वर्डे के 40 वर्षीय

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं बेहद ही खूबसूरत बात के साथ। साथ क्या लाया था मैं और साथ क्या ले जाऊंगा, जिनके काम आया हूं मैं उनकी दुआ ले जाऊंगा। जिंदगी काटी है मैंने अपनी सहरा के करीब, एक समंदर है जो अपने साथ बहा ले जाऊंगा। तेरे माथे की शिकन को मैं मिटाते मिट गया, अपने चेहरे पर तेरा गम सजा ले जाऊंगा। साथ क्या लाया था और मैं साथ क्या ले जाऊंगा, जिनके काम आया हूं मैं उनकी दुआ ले जाऊंगा। जिंदगी में कभी कभी कोई इंसान एक ऐसी उम्मीद बनकर आता है कि वो हमारी ज़िंदगी को ही बदल देता है। उसकी मुस्कुराहट हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि खूबसूरती चेहरे में नहीं सोच और हौसलों में होती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर मुलाकात कुछ नया सिखाने के लिए आती है।

जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जिंदगी भी बदलती है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, हर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत आती है। इसीलिए उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि नई रुत भी बस आने ही वाली है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि साथ निभाने में होता है। जिंदगी में ऐसे रिश्तों की कद्र करना चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ थाम कर रखें, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा दे।

अरुणिमा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, जैसे चरखा लगातार हम चलता है और हमें मेहनत और लगातार आगे बढ़ने की सीख देता है और बिना रुके चलता है, वैसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम इंसानों को भी लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। छोटे छोटे कदम ही एक दिन हमें बड़ी मंजिल पर पहुंचाते हैं, तो बस रुकना मत।

और इसी के साथ अरुणिमा का यही संपन्न होती है। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर तेलंगाना और विदर्भ में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। सरे शाम ठहरी हुई जमी, आसमां है झुका हुआ, इसी मोड़ पर मेरे वास्ते वो चराग लेकर खड़ा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो।

अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। जब मन उलझनों में घिर जाए तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी रास्ता दिखा सकती है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।